0: ना यो तो अब ठार हुआ अतः यहाँ से दोंगर सोम जी के जेम में बा तो दोंगर सोम ना तो जुबान ना तो सुझे जी में हुआ तब ने दोंगर जी दोंगर ऐसे ही और हुआ इधर दांडा यानी साजे जो देवान चंबे यो दे आते चला जुबी दोंगर से दोंगर ना मात पांगा यंदु तें जुबा दोंगर चीने यानी देवी सोम दोंगर चले मातो तोहन देवा में वाले यंदु यानी जुबी दोंगर ता तगीशो यानो जी कम कोमें था ला दोंगर जी दोंगर जुबी दोंगर में ना यो यानी छापन दूसरे जी दोंगर यो आये इंसा दोंगर जी ने ने तो जीसन देवा को दोंगर न्योया के पे के सोन हो जी यो यो मरे तंडे यंदु यानी दोंगर न्यों चोचो के सोन हो दे यारे तंडे यंदु दोंगर सोम जी जुचे में बन नानी कोवा चंबिके कवा नो जी कोवे ने थोशी Chabandaji Dongaji Nani Yuwa Yindu, Kovini Dongaji Manavi, Nekab Chungse Chumme Gare. Dende Yindu, Yishen Dongaji Nasi Tu Samne, Ninje Chi Gore, Song Yimbole. Ninje Chi, Ta Ninje Chi Yindu, Deje Dongaji Tana Chi Maro, Nyambi Ninje Yodu, Ta Koronga Ngune, Takisa Anoji, Lenyonji Dam, Ani Maribu Bo Su, Momba, Mombi Trip Chi Yuwa Yindu, Koronga Ngune, Tatam He Gare. Dāmi tē tāvī tāp tē, tā nīngjī chōng yungdu gōna tēlē tāvī tāp rōng gacī, tēlē tāndu jī lō jī, tēlē dōvī tāp tē rōng gacī dō jī, tāsum yungbī yō rē. Nidā tā rōng gacī tā yēn tē dōngā nāvā tēlē tāvī tāp jē gōndu. Jē gōa kārī sē nā, rōng dōngā jī nāvā nō jī, yēn dōngā jī nāvā yō, mēndō bān rāndā rē. ने रों देखें तो बन हो जी जे देखें तो बन ढांढ़ा रे यंदु ते छाने चेना यो जेंगे दोंगा ड्रागों दो तेरा माजे ने मान नम जी ऐसे ने जेवांगो मा थोमा में बने आजो जेवा चों में बने नॉन या यंदु ते कबला माचे बा चों जी में चोपा चे सो चिंजे चों बा चों जी में चोपा चे चे यारे यंदु चोंगो मा चिंजे चों जिन्सो में ना मारो तत्व से क्यों आयें लो जिन्सो को क्यों आये इन्हाँ यों तंदा नानों सोला रों यों को भी दोंगा ने माता आयें लो ये दोंगा ने डोवा चे दोंगा तादा ने डोवा चे भी नुबा यों मारे नुबा सोला यों ना यों दबो तो भी संजीव कुंभो ना यों भी डागे मागे देना को भी दोंगा ने डोवा चे �
1: 我们是出国西的可以吗？出国西。六倍出国，四倍出国，八倍出国，马里倍出国。六倍出国，四倍出国，八倍出国，马里倍出国。So here is just using a lot of different analogies to describe the suffering state of mother sentient beings. Firstly, it says that swept by the current of the four powerful rivers. So here the waters are used to describe suffering of samsara in general, the immense suffering of samsara in general, and also used to describe the karma and delusions that cause us to circle within cyclic existence. So here the analogy is being carried away by water. You know, one is being helplessly carried away by water. And if one is one is being carried by the four waters, it says here. So, four powerful rivers, and this is the river of suffering, the river of attack, grasping, the river of our wrong views, and the river of ignorance. So in this case, one is being carried away by these four rivers, and tied by the strong bonds of karma, which are hard to undo. So, the analogy of a being being bound by the bondages of or the chains of karmic links. You know, if one is being thrown in the water, and if one is free to swim, you know, at least one could free oneself from the river. One could swim to the opposite shore. However, this is not the case. You know, if one sentient beings are being bound by the chains of karma, and above that is